ये लगे लाउट वुट आउट सब से हो गया ना अपनी लाउट चाउट करने में ना वो मिट्टी वाले पेनिक पता सिलेले रिगुड ना वो सिलेले रिया ना अब लोगों तमाली की वाले में अम्मा के चंग में उन्हें संग ना तमालू तलो तुम असुलाओ मिगिट्सी तो सायक्समिन